न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Shabnam Sahi.
1: A bit of this, a bit of that, a bit of chit, a bit of chat.
0: Next on Sunrise.
2: Sunrise Radio.
0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Ultra Vitamin D, the sunshine vitamin from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
3: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavour. Hira, king in quality, king in taste.
4: ZTV HD पर देखिए तुमसे तुम तक।
5: मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया सजाने में जो मजा आता है ना, और किसी चीज में नहीं आता।
6: ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई।
7: मीरा ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा तुम उठ क्यों नहीं रही? आंखें खोलो मीरा।
8: क्या होगी मीरा की अगली साजिश?
7: अनु तुम प्लीज जल्दी आ जाओ।
6: क्या हुआ यश भैया?
7: मीरा आंखें नहीं खोल रही।
8: अनु और आर्यवर्धन क्या मीरा के हर झूठ और साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? देखिए तुमसे तुम तक आज शाम 6 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
9: गिव योर होम इट्स ऑटम ग्लो अप विद Dunelm. कुशन्स एंड थ्रोस दैट मेक योर सोफा इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट, डन. Cozy curtains that keep the heat in when it's colder out. Done. Table set for dining in without forking out. Done. Your perfect bedding for a longer, deeper sleep. Beautifully done. This autumn, make your home feel a little more you with Dunelm, the home of homes.
10: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: लॉन्ग लाची मन्नत नूर की आवाज में सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा लिसनर्स चॉइस।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour, our loving tribute to Nana Patekar. Sunil Shetty wrote this morning, absolutely shocking. They don't make men like you anymore, so deeply rooted, no matter how high you rose. Unapologetically yourself, fiercely honest, and a master of your craft. There was only one Nana, there will never be another. Rest in peace, Bhau. Cinema won't be the same without you. Taking you back to this beautiful song from the film Prahar, Suresh Vadkar ki awaaz mein.

0: 2014 की फिल्म बदलापुर, आतिफ असलम ऑन द वोकल्स, जीना जीना। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे द 8th ऑफ अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
1: द गोल्ड रेट विद सनराइज रेडियो ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, वर्ल्ड वाइड वाया sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Many, many beautiful tributes to Nana Patekar. You know, people who knew him personally, even though they are celebrities in their own right, they are saying that a common misconception about Nana Patekar was that he was extremely intimidating as a man and indeed as an actor because he was so talented. He was so effortless, right? Sunil Gavaskar, a cricketing legend, wo kehte hain, heartbreaking news. My Nana from Pune has left us to be with the gods above. I will miss him. His scolding with warmth and his unbounded affection. Bahut sare log yehi kehte hain ki, you know, sometimes he knew the effect that he had on people. When he walked into a room, there would be a hushed silence. So people would sometimes be a little afraid to go up to him and tell him just how much they loved him in a certain film or how they remember a certain piece of dialogue back to front, even after so many years. Kabhi kabhi log unko ye उनसे फेस टू फेस ये जाकर कहने में डरते थे, कतराते थे, एंड ही वुड काइंड ऑफ यू नो रियली प्ले अलोंग, बट अंडरनीथ ही वाज अ लविंग मैन। ही लव्ड टू प्ले प्रैंक्स ऑन पीपल, एंड सुनील गावस्कर देन लेटर गोज ऑन टू से दैट इवन दो ही वुड ऑलवेज कॉल्ड मी फॉर दिस दैट ऑर द अदर, ही वुड बी सो लविंग, आई विल रियली मिस हिम। नाउ व्हेन वी लुक एट नाना पाटेकर्स फिल्मोग्राफी, वेलकम इज अ नेम, इज अ टाइटल दैट हैज कम अप इन मेनी मेनी ट्रिब्यूट्स। So naturally, we had to play a song from that film. 2007 ki film, Anand Raj Anand, Shweta Pandit.
5: Oh!

0: Maximum temperatures today, 15 in London, 16 in Southampton, 14 in Leeds and 15 in Cambridge.
1: The Sunrise Radio weather update with Dairy Valley, the gold award winner of International Cheese and Dairy Awards 2026. It's simply desilicious.
0: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. इट्स अ थर्सडे, इट्स द 8th ऑफ अक्टूबर. मेरा और आपका साथ पूरे 12 बजे तक व्हेन कविता टेक्स ओवर. ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अ कंपटीशन दिस आवर, बट फर्स्ट अपार शक्ति खुराना विद लव्ज़ा, आतिफ असलम विद तू जाने ना ऑन सनराइज. गुड मॉर्निंग.
2: With Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets now open on Desborough Road, High Wycombe. Ambala, 100% vegetarian.

0: Era lost, kisi aur ka found. Absolutely. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे द 8th ऑफ अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ. इस घंटे का हमारा लिसनर्स चॉइस
1: ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस.
2: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. व्हाट अ प्लेयर.
3: वॉच इंडियाज टॉप 1% एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Now, our tribute to Nana Patekar would remain incomplete if we didn't revisit an action crime thriller from the year 1994, Krantiveer, Brave Revolutionary. Nana Patekar, Dimple Kapadia, Atul Agnihotri, Mamta Kulkarni, and supported by, listen to this, Farida Jalal, Paresh Rawal, Tinu Anand, Danny Danzongpa. The third highest grossing film of 1994, winning 3 Star Screen Awards, 4 Filmfare Awards, and 1 National Film Award as well. Kumar Sanu, Purnima on vocals. Good morning.